सतगुरु गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह सेवक का जिक्र करते हैं जो सच्चे दिलों अपने गुरु का सेवक बन जाता है उस सेवक नूं सतगुरु जी कितना माण बख्श रहे हैं, उस सेवक नूं कितने मरातबे दे रहे हैं, जां इउं कहो कि उस सेवक ते सतगुरु जी कितनियां मेहरां ते बख्शां कर रहे हैं। दुनिया का कम चाहे किन्ना भी औखा कम होवे बंदा कर सकता है, जां बंदियां ने कर लिया है, पर सब तो औखा नाम जपना है। सतगुरु जी ने आप ही बाणी विच लिखिया कि आखण औखा साचा नाम, औखे तो औखा कम बंदा कर सकता है पर सब तो औखा नाम जपना है। नाम जपना बड़ा औखा है, कह लेने कि बड़ा सखाला है पर है बड़ा औखा। पहला तो जपते ही नहीं, जे सतगुरु जी ने कृपा कर दिती तो फिर जपते हैं तो मन नहीं लगता। औखा जो हो पंडिता ने आके बेनती की गरीब नवाज, कलयुग का समा है, लोग कथा नहीं सुनते, जो कथा नहीं सुनते तो साडा गुजारा पूजा नाल भी बड़ी अखियाई है, गुजारा मुश्किल हो गया, रोटी भी चल नहीं सकती, क्योंकि कथा सुन कोई आंदा नहीं ते माया संगत ने लियानी, पूजा श्रोत्या ने लियानी है, सुन वाले ने जगासुआ ने। तो गुरु साहब कह लगे पंडित तुसी साडे कोले रहा करो ते साडा वचन मनिया करो, सुन खाना पीना फ्री तुहानू, सोहणे वस्त्र देवांगे ते लोड़ अनुसार माया भी बख्शा। गरीब नवाज तुहाडे पास तां आ जाइए पर ड्यूटी की है? महाराज कहंगे सानू ड्यूटी भी सिखाली दसांगे, ए नहीं क्योंकि तुसी पंडित लोक हो, विद्यावान कथाकार भी तुहानू हाली बाहन ला दिए जां टोकरी चक्कन ला दिए, तुहाडे कोल ओह कम होणे नहीं, तुहानू असीं ओही काम दसांगे जिहड़ा तुसीं काम करन योग हो जां कर सकदे हो। बेशक गुरु घर च गुरु वेख सेवा नेक, अनक भांत कर सेवा करिए, अनेक प्रकार दी सेवा है, इमारतां बन रहियां, पढ़ाइयां हो रहियां हन, एक पासे फौज भी तैयार हो रही है, हुण फौज दी जिहड़ी ट्रेनिंग है सिखलाई है बड़ी औखी हुंदी, भाव कि तुहानूं औखा काम नहीं दसदे। गरीब नवाज हुक्म करो, कहण लगे माला पकड़ लो उहदा की कम। बाबा जी ने कहना भी गल्लां ना करो क्योंकि गल्लां गल जाण वाली चीज है, ते गल्लां नाल कुछ नहीं बनदा, ज्ञान ना गल्ली ढूंढी है कथना करड़ा सार, भी गल्लां नाल ना ज्ञान मिले ना कुछ होर मिले।

जप भी करदा है और यथा शक्ति अगर ज्यादा कोशिश करे ते तप भी कर लेंदा है। आम देखण दे विच आउंदा है कि रब दे नां ते कई व्रत भी रखदे हैं।

साहिब फरमान करदे हन कि सारा कुछ परमेश्वर दी कृपा नाल गुरु तो ही प्राप्त हुंदा है।

ताप जो तप है, व्रत है, नेम है, आचार तो मतलब करैक्टर है मनुख दा, और व्यवहार जो रोज दा व्यवहार करदा है, जात जो कम तो पहचानिया जांदा है। साहिब फरमान करदे हन कि ए सारा कुछ जे मनुख करदा होया अपने गुरु दे अर्पण कर देवे ते मानो के जो त्याग दे विच उसनु सुख प्राप्त होवेगा, जो शांति प्राप्त होवेगी, ओहो ही सच्चा सुख है और ओहो ही सच्ची उसनु शांति प्राप्त होवे। साहिबां दा फरमान है कि जे कोई ये चाहे कि मैं महा आनंद दी प्राप्ति कर लवां, ते महा आनंद दी प्राप्ति है कि उस मालिक दी कीर्ति कीती जावे, उस मालिक दा जस गाया जावे। जैसा कि गुरु नानक पातशाह ने अपने जीवन दे विच कीता, अपने जीवन दे विच उन्हां ने होर कोई योग नहीं कीता, इको ही योग कीता कि उन्हां ने अपने प्राणा राही प्रभु दी कीर्ति कीती। इतना गाया प्राणा करके, इतना गाया कि उन्हां दा जप ही ज्ञान हो गया, उन्हां दा तप ही ज्ञान हो गया। और साहिब फरमान करदे हन कि जेड़ा उस परमात्मा दी कीर्ति सच्चे दिलों करदा है ओ मालिक दी प्राप्ति दे विच सफल हुंदा है।

जिसे घर भी आए दर्शन करिए महापुरुष आए दर्शन किए प्रसाद भुगताया बड़ी खुशी दी।

सपना है। हजूर बाणी विच भी बख्शिश कर दिया न, सपने सेती चित मूर्ख लाया। ओए मूर्खा, कदी सपने भी सच्चे होए हन? सोच ए संसार भी सपना है। जितने तियां पुत्र धन दौलत महल मारियां, जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए ए सपना है। सपने नाल चित लाउन वाला मनुख कदे तोड़ नहीं अपड़े। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हन कि श्वासा नू सिमरन दी माला बना। श्वास श्वास हर नाम जप, बिरथा श्वास मत खो। क्या जाने ए अंतकाल ए श्वास मत हो। किसे नू की पता है कि जेड़ा श्वास मैं जप रहा सतनाम श्री वाहे गुरु, इस तो अगला श्वास आना कि नहीं आना इसका किनू पता है। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं भाई, सास ग्रास बंदगी कर, श्वासा का कोई पता नहीं। एक बुजुर्ग बाबा शरीर छड़न लगा, सारा परिवार आके बेनती करन लगा, बाबा जांदियां जांदियां कोई चंगी सुमति दे जा। ए बुजुर्ग बाबा कहन लगा, मैं अपनी होंद विच अपने जीवन विच तुहानू लखां ही कमा के दिते हन, हुण मेरे श्वास समाप्त हो गए हन, ते कुछ खर्च करके कुछ पैसे दे के ते श्वास लियाओ तां मैं तुहानू सुमति दे सकदा हां, पर इस सारे परिवार ने नीवियां पा लईयां। आख्या बाबा ये श्वास तां किसे भी कीमत तों मुल नहीं मिलते। फिर ये बुजुर्ग कहन लगा, फिर यही उपदेश है कि इना अमोलक श्वासा दे नाल नाम दे लाला दे वणज करना, तुहाडा संसार ते आउणा वी ते संसार तों जाना भी धनता दे योग हो जाएगा। ऐसा ना होवे ए लाल गुआच जान ते फिर तू लभदा फिरे, ए लभण वाले नहीं हन।

जिस परमात्मा ने तेनू बोलन दी जाच दिती ऐ रसना, फिर उस परमात्मा दा सिमरन तू क्यों

इतना रोगी नहीं होता जिन्ना कि बहुता खान वाला रोगी होता है। भुखे घट मरते ने, बहुते खान वाले ज्यादा मरते। ए रसना सतगुरु जी उपदेश कर रहे ने, ए रसना तू अन रस राज रही। अन रस कहते ने होर रस, होर रसा विच ते पै गई, ऐ भी खा लवा वह भी खा लवा। किसी की निंदा चुगली की, किसी नु माड़ा कहा, किसी नु गालां कढ़िया, माड़ी गल करके किसी का घर बर्बाद कर दिता, ये काम तो तू किया। पर ऐ रसना तू प्रभु का सिमरन नहीं किया। खाण दे भी रस हैं, झूठ बोलना भी का रस है, निंदा चुगली करनी भी का रस है, ये सारे रस तू

कि अंत वेले तू मेरी सहायता करी। ते साध संगत घरवाली ने भी एह गल कही, मेरे माता पिता ने तुहाडे लड़ लाया, तुहाडा फर्ज है मेरी पालना करनी, इथे दुख सुख विच मैं तुहाडे नाल हां, पर जद उस दरगाह विच लिखा होगा मैं तुहाडी सहायता नहीं कर सकता। भाई गुरदास जी की पौड़ी है, घर विच पुछन कल्लिया, अंत काल है होए आ सारा, घर विच महापुरशां ने भेजिया जा पुछ के आ, अंत वेले कोई सहायता।

मरा मरा जपदिया जपदिया ऐसी मालक दी मेर होई बिरती लग गई मन जुड़ गया ए रसना जेड़ी मरा मरा कहती सी कृपा हुई मालक दी मरा मरा तू हुण राम राम हो गए समा बीते ओही आर्या समाज दे सत रिखी फिर उस पासे आए राम राम दी आवाज आ रही है इधर उधर देखिया बंदा कोई नजर नहीं आंदा एक मिट्टी दा ढेर है उत्ते कास उगे अपनी शक्ति ना

जिस थान ते हर आदमी नू शरण मिलदी है, जिथे एक सुंदर नगर वसदा है, अते जिस दा शिंगार ए पागां वाला तख्त है, उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहे हां, इस राज विच सब बराबर ने, इत्थे सारिआं नूं सत्कार मान इज्जत मिलदी है, और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा पहला सिक्का मैं

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार

थोड़ा जहा ज्ञान जरूरी। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुट्टिआ पर ओह हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नूं तीर मारिआ हिरनी जिहड़ी सी मरी ओहदे पेट विच

आश्रम बना के रहन लग पया अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पया। इस गोदावरी के किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के कोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़िया ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधो दास दे आश्रम पहुंचे ते माधो दास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधो दास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधो दास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बैठ

जंगल विच भजे गए। माधो दास बैरागी नू जाके कहन लगे, तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गए। लाओ लश्कर भी नाल है, ओदे चेहरे अगे किसे दी अखां नहीं हुंदियां। ता माधो दास गुस्से विच आ गया, कहन लगा, दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है, मैं उन्हूं पलंग तों थले डेग दियांगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती, पर माधो दास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधो दास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधो दास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।

अपने आश्रम विच पहुंचे हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पलंग ते बैठे हैं। चार चफेरे सिख योधे शस्त्रां नाल सजे खड़े हैं।

माता सती ने उन्हां नूं कहा, शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जाने की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलों में पहुंचे जी

शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया ता दशक ने अगू सगा होर किया, ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़के पसम हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा ता उन्हां ने उस वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी

आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर किया। तां उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वड के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता। हर पासे खून दे फुहारे छुट पए। सारे लोग इउं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी होई परलव आ गई हो। इसे तरह यह कथा शिव पुराण दी। शिवजी भगवान ने

मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान ओ भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती, अते जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता ओदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया। हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा।

ठंडे बाटे दी पहल नू छक लिया। उस सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

गिद्दड़ों से मैं शेर मरवाऊं, सवा लाख से एक लड़ाऊं, होया भी ऐसा। लखां लखां फौजां नाल एक

तलवार दे जोर नाल इन्हां दे जन्नू ला रहा, इन्हां दे मत्थे तो तिलक पूंज रहा। मुसलमान बना रहा, जे कोई मुसलमान नहीं बन

राग गौड़ी दीप की विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस ते आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस ते जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गाव हो मेरे निर्भौ का सोहिला शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

0: उस वह करके अर्थात समुद्र की मत कहो काट वनस्पति सगरी लिख बहु के लेखन काज बने हो सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपाण ना बिनती बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न कोट
1: बराद हमारे खंडो कोट बराद हमारे खंडो
0: अनक विधि समझाओ हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरत रखाओ तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी शरण